सो हम लोग आ गए हैं वापस और आप लोग सुन रहे थे हसन रहीम का गाना. आई काइंड ऑफ फाइंड द गाय वेरी फनी. ही इज़ लाइक वेरी नॉन शलांट एंड स्टिल वेरी यू नो या आउट देयर एंड स्टिल वेरी कूल काइंड ऑफ. सी हियर वी गो, हमने बंद नहीं किया था म्यूज़िक, अब हो गया बंद. बात चल रही थी भाई साहब मौसम के बारे में. ओ माय गॉड, क्या मौसम हो रखा है. गर्मी इतनी सारी है. और एक चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है इस गर्मी के मौसम के बारे में, कि चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन उसके बावजूद आप लोग बाहर जा सकते हैं, लोगों के फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं, स्विमिंग जा सकते हैं, मतलब इधर उधर लेक्स पर जा सकते हैं. लेकिन मसला इस कि वजह से हमारे वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में होता है ना कि शाम के टाइम जो है वो थोड़ा सा सूरज जो है वो ठंडा होने लग जाता है, वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होती है. बिकॉज़ रात तक सूरज ही सूरज चमकता रहता है, तो वो बहुत अजीब सा चीज़ है और हम लोगों को की आदत नहीं है ऑब्वियसली. बट फिर भी मौसम जो है वो एक बहाना है और आपको फिट रहने का, और आप बाहर जाइए, इधर उधर घूमिए फिरिए, और मतलब थोड़ा सा पसीना आए तो आपके पोर्स खुलें तो आपकी स्किन प्यारी सी लगे, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें कीजिए जो आप कर सकते हैं. और मौसम पे तो फिर भाई किसी का जोर नहीं है, तो फिर जैसा भी मौसम है बर्दाश्त करना पड़ेगा. अभी जुलाई में मुझे पाकिस्तान जाना है और वहाँ पर आराम से 45 प्लस होएगा, लेकिन सम हाउ मुझे बच्चों के साथ 45 प्लस मैनेजेबल लगता है बिकॉज एसी उसी में बंदा बैठ जाता है. लेकिन वो जो वहाँ पर सर्दी है ना, वहाँ पर बच्चे आर नॉट यूज टू ऑफ वेयरिंग जैकेट्स, और उसके बाद फिर अंदर बाहर गर्म नहीं होता और घर उस तरह से, और अगर हीटर्स होते भी हैं तो मतलब ऑब्वियसली वहाँ पर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स नहीं होते हैं, तो बच्चों के साथ मुझे समहाउ सर्दियाँ बहुत वहाँ पर अजीब सी लगती हैं. और सर्दियों के अलावा और गर्मियों के अलावा और कोई आपके पास टाइम नहीं है जब आप ज़्यादा देर जाकर सुकून से वहाँ पर रह सकते हो, तो इस वजह से आई थॉट कि चलो गर्मी में लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी हाउ इट इज़. बट कुछ दो साल पहले मैं उमरा करने भी इसी टाइम पर इसी मौसम में गई थी, एंड दैट वॉज ऑल्सो स्केरी, मतलब इट वॉज स्केरी. गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. बट वही बात है जो अभी मैंने इंट्रो में कही थी कि बस ईद है, जब भी आप अपने लव्ड वंस को मिल सकें आपके लिए ईद ही होती है. और इसी नोट के साथ हम हसन रहीम का एक और गाना चलाएंगे जो तलविंदर के साथ है और जो कि मैंने नहीं सुना हुआ है, तो हियर वी गो विद एन अदर सॉन्ग ऑफ हसन रहीम. मैं बार बार उसको हसन रहीम क्यों बोल रही हूँ.

सो आप लोग आ गए हैं वापस और हम लोग सुन रहे थे क्या नाम था गाने का, आई डोंट नो गाने का नाम क्या है. एक तो एक मैं भी बहुत बड़ा आइटम हूँ, मतलब मुझे गानों के नाम भूल जाते हैं. तो है हसन रहीम का गाना था, उसके अंदर तलविंदर भी था. मैंने अभी पिछले दिनों भी देखा जिस पर देवर किसी कॉन्सर्ट में देवर डांसिंग ऑन नच पंजाबन नच पंजाबन एंड इट वाज फन. मतलब इट्स फन टू टू सी पीपल कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर और इस तरह के मज़े मज़े से गाने बनाते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स. मतलब मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मतलब ये क्या एक दूसरे के साथ हर वक्त लड़ते रहो झगड़ते रहो डिफरेंसेस ढूंढते रहो. जब डिफरेंसेस ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस क्रिएट होंगे बिकॉज हम पूरा अपना फोकस इस चीज़ पर लगा रहे हैं कि यार मतलब हम दूसरे बंदे से डिफरेंट कैसे हैं. और डिफरेंट इतना ज़्यादा बंदा होता जाता है कि उसके बाद एक टाइम आता है जब आप एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते. और इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के दरमियान में कुछ वही वाला चीज़ हो गया हुआ है कि थोड़ा थोड़ा अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा. तो इट्स फन टू इट्स गुड टू सी इस तरह से पीपल कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर टॉकिंग अबाउट ईच अदर. अभी हानिया का मैं देख रही थी फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शी गॉट सिलेक्टेड एंड ऑल दैट गॉट फीचर्ड एंड मतलब दिस इज़ सच अ बिग अचीवमेंट बिकॉज इस तरह से एक दूसरे कंट्रीज़ में जाएँ. बांग्लादेश में शी वेंट, इंडिया में पंजाबी मूवी की और इस तरह से. तो अच्छा है ना, मतलब आप ग्लोबल उस पर एक दूसरे को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं. और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि एक टाइम आता है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको आके लगता है कि भाई कितना लालच आप और कितना मतलब आई एम 36 और मुझे इस एज में अभी लगता है कि यार मतलब क्या और ज़्यादा से ज़्यादा क्यों चाहिए, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. मतलब क्यों नहीं है लोगों के अंदर वो एक सेटिस्फेक्शन कि हाँ बस ठीक हो गया. मतलब मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट भी ये चीज़ें बहुत इंट्रीगिंग लगती हैं कि मतलब ऐसा क्या है कि आप कभी वो सुकून ही नहीं ढूंढ पाते. कभी कभार लोग 40-40, 50-50 साल के हैं, 60-60 ईयर्स के हैं और उनको वो सुकून नहीं मिलता. वो अभी भी बेचैन रहते हैं, उनको अभी भी छोटा बच्चा बनना है, उनको अभी भी ऐसे करना है जैसे मतलब यू नो अभी जैसे वो 20s में है एंड ऑल दैट. तो आई फील वेरी सैड फॉर ऑल दोज पीपल जिनको सुकून ही नहीं मिलता लाइफ में. इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन किया करें, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसमें हम अपने अंदर झांक कर देखें कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके साथ हम लोग अपने आप में सुधार लेकर आ सकते हैं, वो क्या चीज़ें होंगी जिनको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम खुश हो सकेंगे. असल मकसद इस ज़िंदगी का ये है कि आपको सुकून मिल सके, जो कि हमारे कायद इमरान ख़ान के बकौल सुकून तो सिर्फ कब्र में मिलता है लेकिन सुकून ढूंढ तो सकते हैं. मतलब सुकून एक मंजिल नहीं है, सुकून एक रास्ता है. तो मतलब उस रास्ते में हम लोग, ये दुनिया जो है ना ये एक रास्ता है और इस रास्ते में से गुजरते हुए हम बस सोचते हैं कि यार मतलब कौन सा रास्ता मुझे सूट कर रहा है, कौन से रास्ते में खड्डे कम पड़ेंगे, कौन से रास्ते में मुझे टेंशन्स कम आएंगी. तो मतलब एक ऐसा रास्ता ढूंढना है कि तरफ हमने जाना है अपने आप को समझ के, जिसमें जाते हुए हमें कम खड्डे मिलें और कम से कम वो खड्डे जो हमने खुद अपनी तरफ से बनाए हुए हैं वो हम अवॉइड कर सकें, वो मुश्किलात जो हमने खुद अपने लिए खड़ी की हुई हैं उनको हम ओवरकम कर सकें एटलीस्ट, तो ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर सकती है. आई जस्ट वॉन्ट कि जब आप अपने बारे में सोचा करें तो आप अपने आप से सवाल किया करें कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या चीज़ है जो मुझे खुशी देती है, किस चीज़ से मुझे गुस्सा आता है, क्यों मुझे बेचैनी होती है, मैं एकदम से हंसने किन चीज़ों पे लग जाता हूँ और मुझे कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती हैं. हमारे कल्चर इस तरह इंडिया पाकिस्तान में कि हम इमोशंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं. जैसे एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं जब अपने क्लाइंट से मिलती हूँ तो मेरा पहला सवाल यही होता है, वी गेट अ सीन इन सेलिश. तो मतलब जैसे ही मैं सेलिश का वर्ड यूज़ करती हूँ एकदम से वो सोचते हैं कि अच्छा मतलब अब क्या जवाब देना है, बिकॉज़ अगर तो अब मैं
कपलिश पूछोगे ना तो वो तो आपको 10 चीज़ें मिल जाएंगी एकदम से, क्या सर में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, थाइस में दर्द होती है, इस तरह की बातें. लेकिन जब आप सेलिश बात करते हो, जब आप अपनी रूह की बात करते हो, अपने इमोशंस की बात करते हो, आपके एक्चुअली अंदर कैसा फील हो रहा है, तो हर बंदा 2 मिनट के लिए रुक जाता है बिकॉज दे डोंट नो कि कैसा फील हो रहा है, बिकॉज उन्होंने कभी ये सवाल अपने आप से पूछा नहीं है और ये सवाल कभी उन लोगों से किसी और ने नहीं पूछा है. तो ये सवाल इतना ज़रूरी है और उसके बावजूद इतना कम पूछा जाता है कि मुझे लगता है कि यार मतलब हमें अपने बच्चों में बचपन से ही ये चीज़ इनकलकेट करनी चाहिए कि हम इमोशनल बींग्स हैं और जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वैसा ही हमारा दिन गुजरता है, वैसे ही हमारे साल गुजरते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी गुजरती है. तो जब आप अकेले बैठे तो अपने आप से पूछें कि मैं अभी इस टाइम पर क्या फ़ील कर रहा हूँ, मुझे अभी इस टाइम पर कैसा महसूस हो रहा है, और अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो क्यों, और अगर बुरा महसूस हो रहा है तो क्यों. सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें और अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करें और सोचें कि आपको कौन सी चीज़ें खुशी देती हैं और कौन सी चीज़ों से आपका मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है. इसी नोट के साथ, क्योंकि हम तलविंदर का गाना सुन रहे थे, तो अभी एक और हम उसी का चलाएंगे. तो हियर वी गो विद अनदर सॉन्ग. Ta-da!

हम लोग आ गए हैं वापस और आप लोग सुन रहे थे पल पल जीना मोहाल मेरा तेरे बिना, ये गाना मैंने सुना हुआ है। हाँ, तो ये वाला गाना मैंने सुना हुआ है और हम थोड़ा सा अपने ट्रैक से हटके हम एहसन रहीम के गाने चला रहे थे, हम वापस वहीं पर ही जाएंगे, लेकिन ऐसे ही मुझे नज़र आ गया तो मैंने कहा ये भी चला देते हैं, इसमें क्या हो गया। तलहा अंजुम ऑल्सो मेक्स वेरी गुड सॉन्ग्स, बट मैंने कभी तलहा अंजुम के इतने ज़्यादा गाने सुने नहीं हैं, तो इसलिए इतना मुझे कोई ज़्यादा इस बारे में मालूम नहीं है लेकिन हसन रहीम के हम गाने चलाते रहेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी और भी बहुत सारे गाने हैं जो एक्चुअली आर वेरी गुड, लाइक वेरी एडिक्टिव एंड वेरी गुड। जैसे मुझे आजकल जो एक गाना है जो मैं अभी नहीं चला रही, अभी पहले हम लोग ऐसा करते हैं हसन रहीम का एक और गाना सुन लेते हैं और उसके बाद चलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग सुन रही है हसन रहीम का एक गाना, उसके बाद जब हम वापस आएँगे तो हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो बात कर रहे थे उनके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग और भी गाने साथ साथ चलाते रहेंगे। तो देयर इज अनदर सॉन्ग हसन रहीम एंड दैट्स राधा, हियर वी गो, यप दैट्स द सॉन्ग।

सो आप लोग आ गए हैं वापस और हम लोग देख रहे थे हसन रहीम का एक और गाना, दैट इज राधा, अभी भी चल रहा है बैकग्राउंड में. हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे सेल्फ रिफ्लेक्शन की. हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने जो है वो अंदर झांक कर पूछ सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपकी आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है, आपको गम किस चीज़ से होता है, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप जैसे आप अगर अपने आप से पूछें कि आप हैं कौन, जैसे मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, जैसे जब मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो द आंसर वुड बी मैं एक मदर हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक औरत हूँ, इस तरह के सारे आपके दिमाग में जब आप सवाल पूछते हैं तो टाइटल्स आते हैं, ठीक है, और आपने जो टाइटल्स में सबसे ऊपर आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करके आता है ना कि मैं एक माँ हूँ, उसका मतलब एक्चुअली ये है कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में माँ का जो आपका स्टेटस है या माँ का जो आपका रोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो मतलब बेदहानी में जब आप अपने मुंह से कुछ टाइटल्स बोलते हो जो आपकी आपको डिफ़ाइन करते हैं, तो उनमें जो सबसे ऊपर होता है उसको आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, उस टाइटल को आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है. तो जैसे मैं एक औरत हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें. तो इसलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन का वो यही होता है कि मैं एक्चुअली हूँ कौन, ठीक है. मुझे अपने में क्या अच्छा लगता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अपने आप में अच्छी लगती हैं, यू नो, बिकॉज़ हम जब अपने आप से बात करेंगे तो हम खुद अपने एक ऐसे भूले हुए दोस्त हैं जिसके पास जिसके लिए आपके पास खुद टाइम नहीं है, ठीक है. मतलब बहुत अंदर से सिग्नल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सर दर्द होता है, दिल घबराता है और सारा कुछ, बट उसके बावजूद हम वो जो अंदर एक छुपा हुआ आपके दोस्त है ना, उसको हम पूछते नहीं है कि भाई क्या मसला है. तो अब जब हम पूछने लगे हैं उसको, तो हम गलत कड़वी बातों से नहीं शुरू करेंगे, हम अच्छी बातों से शुरू करेंगे, जैसे कि भाई मुझे अपने बारे में क्या अच्छा लगता है, मैं ऐसी कौन सी खूबियां हैं मेरे अंदर, ऐसी कौन सी बातें हैं मेरे अंदर जो मुझे अपने आप में पसंद हैं. ऐसा कौन सा टाइम होता है जब मैं खुद को बहुत अच्छे से फील करता हूँ, जब मैं खुद फील करता हूँ कि ओ माई गॉड या दिस इज़ मी, दिस इज़ नॉट सम आइडिया दैट आई लर्नड फ्रॉम यूट्यूब, दैट इज़ नॉट सम कोट आई रेड समवेयर वंस, नहीं, आप खुद कौन से वो एक ऐसा पल जब आपको एकदम महसूस होता है कि यार मैं आज पहली दफ़ा निमरा से मिल रहा हूँ, यू नो, मैं खुद आज पहली दफ़ा अपने आप से मिल रहा हूँ, तो वो ऐसा कौन सा टाइम है कि जब मुझे महसूस होता है कि ये मैं हूँ. उसके बाद अब हम ये जब क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सुकून आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अपने अंदर के जो एक भूले हुए दोस्त के साथ ताल्लुक है वो थोड़ा सा उस्तवार होएगा. उसके बाद हम बातें थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, ठीक है. तो जब हम गहराई में बात करेंगे तो हम पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें ट्रिगर करती हैं, ऐसी कौन से अब टाइम्स हैं जिस टाइम पर तुम नर्वस होते हो, जब तुम्हें बुरा लगता है या जब तुम एकदम से इमोशनल हो जाते हो या एकदम से इमोशनल होने के साथ साथ गुस्से में आ जाते हो और सारी चीज़ें. ऐसा कौन सा टाइम है या ऐसी क्या चीज़ है जिससे मैं अपने इमोशंस जो हैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, कौन से ऐसे डर हैं जो मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. और अब शुरू होता जाता है, अब वक्त हुआ जाता है क्रिटिक का.
अपने सेल्फ रिफ्लेक्सियन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, आप अपने लिए ख़ुद एक शीशा बने और देखें कि मुझे क्या चाहिए, मुझ में क्या कमी है और सारा कुछ। और वो कमी किस तरह से चेक होती है, अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्सियन करने, अपना क्रिटिक बन के आप अपने आप से पूछें कि अच्छा ऐसी क्या चीज़ है जो मैं बेहतर करना चाहता हूँ, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे ख़ुद में पसंद नहीं है, कौन सा ऐसा टाइम होता है जब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुझे मिलना पसंद नहीं है, और अगर मुझे किसी के साथ मिलना पसंद नहीं है तो मुझे उस चीज़ के बारे में क्या करना चाहिए। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, और ऐसे ऐसे मौक़ों में बहुत ज़रूरी है कि आप अकेले ख़ुद से बैठें, एक आराम सुकून से सुकून माहौल में बैठें। जैसे अब माएँ हैं बहुत ज़्यादा या आप काम करते हैं तो आप रात को जब घर आते हैं, जब सब सो गए हैं, तो उस टाइम आपका टाइम है। उस टाइम ये टाइम है जब आप अपने आप से बातें करें, आप अपने आप से पूछें कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, मुझे आज कैसा लग रहा है। वी गेट्स मिया, हम इतना ज़्यादा पूछते हैं कि हम लोग पूछना भूल जाते हैं कि वी गेट्स मिया आइगेंटलिश बिन इश आउख एंड मैं एंड यू नो। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अपना जब सेल्फ रिफ्लेक्सियन करेंगे, तो सेल्फ रिफ्लेक्सियन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट या मैं भी एक इंसान हूँ जिसकी ख्वाहिशात हैं, जिसको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चाहिए, आगे बढ़ना है, मेरे भी कुछ गोल्स हैं लाइफ में, और अगर मेरे गोल्स नहीं भी हैं तो मैं अभी जिस सफ़र पे रवा दवा हूँ वो मुझे पसंद है नहीं पसंद, वो रास्ता मैंने खुद चुना या किसी और का था। इस तरह के सारे सवाल जो आप दूसरों से पूछना चाहते हैं या जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे पूछें, वो आप ख़ुद अपने आप से पूछें, ताकि आपका ख़ुद के साथ ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत हो सके। अभी बेस्ट टाइम है बालकनी पे जाकर, किसी भी ग्राउंड में जाकर लेट कर सुकून से, किसी भी लेक के किनारे जाकर सुकून से बैठकर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, मौसम भी परफेक्ट है। तो जी हाँ, दैट वाज थोड़ा सा टिप्पणी आज सेल्फ रिफ्लेक्सियन के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको थोड़ा सा अंदर से मज़बूत और थोड़ी सी खुशी आपकी ज़िंदगी में ला सकती हैं। इसी नोट के साथ अब हम एक और गाना सुनेंगे हसन रहीम का, दैट इज़ पता नहीं, समझ नहीं आ रही है कि क्या नाम है, लेकिन जो भी नाम है मैं चला देती हूँ, आप लोग सुनिए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है? हियर वी गो। Ta-da, ta-da. Okay. So, ta-da.

Uh-huh. This was interesting. Lekin, matlab, he has his own style, obviously, aur wo usi tarah se gaata hai. To, theek tha. Lekin, wahi, jaise abhi maine kaha hai ki uska apna ek style hai aur wo usi tarah gaata hai. To, it was good. Acha. बहुत हो गया हमारा सेल्फ रिफ्लेक्सियन के बारे में, हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली और आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी था साइकोलॉजी की क्लास में से. तो इसको इतना ही रखते हैं. मौसम हो रहा है अच्छा और मैं अब आप लोगों को ज़्यादा पकाना नहीं चाहती, तो मैं सोच रही थी कि मैं बैक टू बैक गाने चलाती हूँ, आप लोग सुने और मज़े कीजिए और इन्जॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आज की शाम जो है उसका लुत्फ़ उठाइए. आई होप कि गर्मी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी और मौसम जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा. लेकिन यही रीत है और इसी तरह से ज़िंदगी चलती है. तो जो कुदरत का निज़ाम है उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, वो जो है बस वो वैसे है. वट एवर यू कैन डू इज़ कि आप कोशिश करें कि जो भी चल रहा है उसमें आप कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग ज़रूर ढूंढें. जैसे कि there is an example of एक story है dandelion flowers की, लुविनसान कहते हैं उसको जर्मन में. तो और तो पाकिस्तान में हम उसको माई पुंडी कहते थे. तो वो dandelions की story ये है कि एक आदमी होता है और वो एक अपना पहला नया घर ख़रीदता है और उसमें garden होता है और वो उसमें बहुत excited होता है कि यार अब मैंने नया घर ख़रीदा है, मैं इसको अपने हिसाब से बनाऊँगा संवारूँगा और सारा कुछ करूँगा. लेकिन और वो बहुत सारे plants जो हैं वो भी अंदर plant करता है, बिकॉज़ उसको ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसके पास एक garden वाला घर होता है, वो बहुत खुश होता है. लेकिन जब वो बहुत सारे फूल लगा रहा होता है तो उसमें उसको कुछ एक साइड पर dandelions मिलते हैं. पीछे गाना चल रहा है. तो जब आप उनको वो dandelions जो है वो देखते हैं, तो जो dandelions हैं वो वहाँ पर उगे होते हैं और वो एकदम से वो देख के हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि यार मैंने तो dandelions जो हैं वो लगाए नहीं थे, तो ये कहाँ से आ गया. एंड वो उनको उतार देता है वहाँ से और ही इज़ लाइक कि मुझे dandelions पसंद नहीं है, मुझे नहीं करने थे, मैंने उतार दिए. ठीक है, उसके बाद मौसम चेंज होता है, उसके कुछ दिनों बाद dandelions दोबारा उगाते हैं. वो देखता है, वो फिर गुस्से में आता है, वो कहता है ये क्या मुसीबत है, मुझे dandelions बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इनको उतार दूँगा. वो दोबारा से dandelions को उतार देता है. उसके बाद मौसम चेंज होते हैं उसको और सर्दियों से ख़ज़ां से सर्दी आती है, सर्दियों से बहार आती है और बहार में फिर से dandelions उगाते हैं. और वो इतना ज़्यादा फोकस होता है उन dandelions पे कि वो somehow अपने वो फूल जो उसने इतने प्यार से लगाए होते हैं वो उनके बारे में बिल्कुल भूल जाता है और वो उनके ऊपर बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करता. तो वो dandelions जो बार बार उसकी ज़िंदगी में आते जा रहे थे वो सारी एनर्जी अपनी उन पर लगा देता है और वो फूल जिनको एक्चुअली उसने इतने प्यार से लगाया था सॉरी और वो dandelions जिनको उसने इतने प्यार से लगाया था वो गाना चलाना पड़ेगा मुझे जो बहुत ज़्यादा होने लगे हैं. हम लोग चलाते हैं गाना और आप लोग सुनिए और इन्जॉय कीजिए और मुझे पानी पीना है. Here we go, it's Regardless by आसिम असर.

सो हम लोग आ गए हैं वापस. आप लोग सुन रहे हैं पाक इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं निम्रा आलम. और हम लोग आज चल रहा रहे थे एहसन रहीम के गाने और वो सब पाकिस्तानी गाने जो बहुत ही एडिक्टिव होते हैं और आप बस एक दफ़ा सुनते हो तो आप सुनते ही चले जाते हो. और आज हम लोगों ने बात की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि था सेल्फ रिफ्लेक्शन करना. एंड कभी कभार मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई भी ज़ुबान नहीं आती अभी. मुझे ना अब इंग्लिश समझ मतलब ना इंग्लिश बोली जाती है ना जर्मन तो खैर आती ही नहीं थी कभी भी. और अभी मुझे लगता है कि बस अपनी ज़ुबानें भी भूलने लग गए हैं विच इज़ वेरी ऑड थिंग टू से. मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैं बहुत से लोगों को सुनती थी तो मैं सोचती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है. लेकिन ऐसा होता है भाई साहब. मैंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि आपका एक टाइम आता है जब आपको कुछ भी कोई भी ज़ुबान अच्छी नहीं आती है. तो खैर रिगार्डलेस ऑफ दैट हम बढ़ेंगे आगे. आसिम के बहुत से ऐसे गाने हैं जो बहुत मज़े के गाने हैं. मतलब बहुत सी चीज़ों में मुझे ऐसे लगता है कि भाई मतलब क्या आदमी है. लेकिन जब आप इनके गाने सुनते हो तो आसिम के गाने सुनते हो तो आपको लगता है कि भाई साहब क्या आदमी है यार मतलब. तो इस तरह के बहुत से सिंगर्स हैं पाकिस्तान में. आप इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदा किसी भी इंसान को पर्सनली ना ले. मतलब एज इन आप उन लोगों को उनके क्राफ्ट से याद रखें बजाय उनके कैरेक्टर के. मतलब क्योंकि कैरेक्टर इंसान का चेंज होता रहता है. क्राफ्ट जो है वो आपके साथ अभी भी है और आगे भी चलेगा. और इस वजह से मुझे आसिम के ऐसे बहुत से गाने हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद हैं. जैसे कि देर इज़ दिस सॉन्ग जो ही सैंग फॉर OST किसी ड्रामे का. एंड इस तरह की चीज़ें विच इज़ वेरी वेरी वेरी मतलब आप सुनते हो और आपको लगता है कि वाह भाई दिस इज़ इंटरनेशनल लेवल का थिंगी. इसी के साथ में फालतू प्यार गाना आ गया है हम लोगों का हसन रहीम का. हसन रहीम को भी हम लोग साथ साथ सुनते रहेंगे क्योंकि आज तो टॉपिक तो हसन रहीम ही था. तो हियर वी गो विद अनदर सॉन्ग ऑफ हसन रहीम. जी हाँ मतलब वो कोई मोटर गाड़ी चला रहा है कोई पिक्चराइजेशन है भाई. और गाना जो है वो 3 साल पुराना है भाई साहब. और गाने का नाम है फालतू प्यार. Okay. Let's see how it is.

सो एसएन रैंक के गाने के बाद आप लोग आ गए हैं वापस, और उसके बहुत ही अनकन्वेंशनल से गाने हैं, बहुत थोड़े से अजीब से, मतलब द म्यूज़िक इज़ ऑल्सो नॉट द कन्वेंशनल म्यूज़िक जो जो हम लोग बॉलीवुड के गाने सुन सुन के हम लोगों का वो वाला माइंडसेट बना हुआ है. सो आई गेट इट कि उसके गाने इतने वो मशहूर क्यों होते हैं. सो इसी नोट के साथ हम लोगों का शो जो है वो आज हो गया है ख़त्म, जाने की तरफ है हम रवान दवा, और एंड पे हम एक और गाना चलाएंगे जो कि मुझे बहुत पसंद तो नहीं है, बट इट्स अ गुड सॉन्ग. और जैसे कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि बहुत से गाने हैं जो आसिम के जिस जो टाइटल सॉन्ग है उनमें से मेरी ज़िंदगी है तू इज़ अ वेरी गुड सॉन्ग, तो मैंने सोचा कि चलो वो चला लेते हैं. ठीक है, और इसी के साथ में हम लोग शो रैप अप कर रहे हैं, और आप लोगों के साथ मैं मिलूंगी महीने के सेकंड ट्यूसडे में. आप लोग सुनिए मज़े का गाना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए. अस्सलाम वालेकुम साल्सबर्ग.